ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। नेपाल और चीन की सीमा के पास आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास आपदा के एक सप्ताह बाद भी जारी हैं। नेपाल में आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर 16 लोगों की मौत हो गई है और 540 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित कई समुदायों में अब भी बिजली और संचार व्यवस्था नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बाढ़ से सड़कें और पुल टूट जाने के कारण लोग फंसे हुए हैं। भारी मशीनों की कमी के कारण कीचड़ हटाने के काम में बाधा आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार तलाश और बचाव अभियान के लिए सेना और पुलिस सहित 20,000 कर्मियों को तैनात कर रही है। मध्यवर्ती नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में स्थित पन बिजली कर संयंत्रों में 630 से अधिक श्रमिक इमारतों या सुरंगों में फंसे हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूरे सप्ताह बारिश जारी रहने का अनुमान है। बचाव कर्मी नदियों में बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के खतरे का सामना कर रहे हैं। वर्षा अग्र के साथ आए निम्न दाब तंत्र के कारण उत्तरी जापान में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अधिकारियों ने आओमोरी प्रिफेक्चर में भूस्खलन और बारिश की चेतावनी दी है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि आओमोरी में वर्षा के लगातार बनते घने बादलों से भूस्खलन या बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तोहोकु क्षेत्र में बृहस्पतिवार तक गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तोहोकु में बृहस्पतिवार सुबह तक 24 घंटों में 100 मिलीमीटर तक और होक्काइडो में 80 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने का आग्रह किया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि बृहस्पतिवार से पश्चिम से पूर्वी जापान तक के व्यापक क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक के 24 घंटों में शिकोकु में 200 मिलीमीटर, तोकाई, किंकी, दक्षिणी क्यूशू और अमामी में 150 मिलीमीटर तक, होकुरिकु में 120 मिलीमीटर और कांतो, कोशिनेत्सु तथा चुगोकु क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अतिवृष्टि की संभावना है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक अमेरिका के एशविल शहर में समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जोखिमों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई संयुक्त बयान पारित नहीं किया। जापानी अधिकारियों ने बैठक से इतर अमरीकी समकक्षों के साथ येन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। G20 बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी ने कहा कि जापानी अधिकारी बंधपत्र बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जापान के प्रमुख 10 वर्षीय बंधपत्र पर

0: लाभ लगभग 30 वर्षों में पहली बार 3% से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने लाभ के विशिष्ट स्तरों के बारे में बात करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ ने भी खातायामा के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने संकेत दिया कि जापानी बंधपत्र लाभ में वृद्धि वैश्विक रुझानों से जुड़ी है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष और वित्तीय नीति पर बाजार के दृष्टिकोण के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का हवाला दिया। उएदा ने कहा कि वित्तीय अधिकारी अर्थव्यवस्था पर बंधपत्र के बढ़ते लाभ के प्रभाव पर नजर रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाला एक घोषणा पत्र जारी किया। शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को समाप्त हुआ। चीन और रूस के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ईरान सहित 10 सदस्य हैं। बिश्केक घोषणा पत्र में नेताओं ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और राजनीतिक व राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सदस्य देश द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को बरकरार रखेंगे और इतिहास को बदलने के प्रयासों का विरोध करेंगे, जो संभवतः जापान के संदर्भ में कहा गया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोगी देशों के साथ एक विस्तारित बैठक में भाग लिया। कथित रूप से अमरीका की आलोचना करते हुए शी ने कहा कि प्रमुख देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने और कानून के शासन का सम्मान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रूस ने घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस इस कठिन समय में ईरान को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। पेजेश्कियान के हवाले से कहा गया कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों और अमरीका का सामना कर सकता है। सोनी ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखा और 34 अन्य कंपनियों ने बौद्धिक संपदा की कथित चोरी के आरोप में एआई डेवलपर एंथ्रोपिक के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि एंथ्रोपिक ने गैरकानूनी रूप से बड़ी मात्रा में कॉपीराइट वाले संगीत और गीतों का उपयोग अपने क्लॉड एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। वादी पक्ष, जिसमें वार्नर म्यूजिक ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखाएं भी शामिल है, उसने प्रत्येक कृति के लिए $1.5 लाख तक के मुआवजे की मांग की है। उसने दावा किया है कि एंथ्रोपिक की गतिविधियों से संगीत प्रकाशकों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गीतकारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। एंथ्रोपिक ने संगीत कंपनियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमो वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: ताम-सान, नानी सुरु?
0: ताम, क्या लोगी?
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है?
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो।
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा।
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास।
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देस का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
4: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
4: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
4: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
4: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
4: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
4: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
5: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
6: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
4: निंकी गा रिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
4: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
4: अरिमस
0: है क्रिया
4: अर
0: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
6: कोरे गा ओसुमे देस,
0: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
4: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
4: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: निंकी गा अरिमस, इचिबान निंकी गा अरिमस, どれが一番人気がありますか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
4: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
4: ओतोकुना, ओतोकुना,
0: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
7: गोचुमोन वा,
4: गोचुमोन वा
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
4: चुमोन
1: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: गोचुमोन वा, तामसान नानी सुरु,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का?
7: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो,
3: मिसो रामेन।
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। नेपाल और चीन की सीमा के पास आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास आपदा के एक सप्ताह बाद भी जारी हैं। नेपाल में आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर 16 लोगों की मौत हो गई है और 540 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित कई समुदायों में अब भी बिजली और संचार व्यवस्था नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बाढ़ से सड़कें और पुल टूट जाने के कारण लोग फंसे हुए हैं। भारी मशीनों की कमी के कारण कीचड़ हटाने के काम में बाधा आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार तलाश और बचाव अभियान के लिए सेना और पुलिस सहित 20,000 कर्मियों को तैनात कर रही है। मध्यवर्ती नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में स्थित पन बिजली कर संयंत्रों में 630 से अधिक श्रमिक इमारतों या सुरंगों में फंसे हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूरे सप्ताह बारिश जारी रहने का अनुमान है। बचाव कर्मी नदियों में बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के खतरे का सामना कर रहे हैं। वर्षा अग्र के साथ आए निम्न दाब तंत्र के कारण उत्तरी जापान में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अधिकारियों ने आओमोरी प्रिफेक्चर में भूस्खलन और बारिश की चेतावनी दी है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि आओमोरी में वर्षा के लगातार बनते घने बादलों से भूस्खलन या बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तोहोकू क्षेत्र में बृहस्पतिवार तक गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तोहोकू में बृहस्पतिवार सुबह तक 24 घंटों में 100 मिलीमीटर तक और होक्काइडो में 80 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने का आग्रह किया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि बृहस्पतिवार से पश्चिम से पूर्वी जापान तक के व्यापक क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक के 24 घंटों में शिकोकू में 200 मिलीमीटर, तोकाई, किंकी, दक्षिणी क्यूशु और अमामी में 150 मिलीमीटर तक, होकुरिकु में 120 मिलीमीटर और कांतो, कोशिनेत्सु तथा चुगोकु क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अतिवृष्टि की संभावना है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक अमेरिका के एशविल शहर में समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जोखिमों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई संयुक्त बयान पारित नहीं किया। जापानी अधिकारियों ने बैठक से इतर अमरीकी समकक्षों के साथ येन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। G20 बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने कहा कि जापानी अधिकारी बंधपत्र बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जापान के प्रमुख 10 वर्षीय बंधपत्र पर लाभ लगभग 30 वर्षों में पहली बार 3% से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने लाभ के विशिष्ट स्तरों के बारे में बात करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ ने भी कातायामा के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने संकेत दिया कि जापानी बंधपत्र लाभ में वृद्धि वैश्विक रुझानों से जुड़ी है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष और वित्तीय नीति पर बाजार के दृष्टिकोण के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का हवाला दिया। उएदा ने कहा कि वित्तीय अधिकारी अर्थव्यवस्था पर बंधपत्र के बढ़ते लाभ के प्रभाव पर नजर रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाला एक घोषणा पत्र जारी किया। शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को समाप्त हुआ। चीन और रूस के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ईरान सहित 10 सदस्य हैं। बिश्केक घोषणा पत्र में नेताओं ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और राजनीतिक व राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सदस्य देश द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को बरकरार रखेंगे और इतिहास को बदलने के प्रयासों का विरोध करेंगे, जो संभवतः जापान के संदर्भ में कहा गया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोगी देशों के साथ एक विस्तारित बैठक में भाग लिया। कथित रूप से अमेरिका की आलोचना करते हुए शी ने कहा कि प्रमुख देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने और कानून के शासन का सम्मान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रूस ने घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस इस कठिन समय में ईरान को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। पेजेश्कियान के हवाले से कहा गया कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों और अमरीका का सामना कर सकता है। सोनी ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखा और 34 अन्य कंपनियों ने बौद्धिक संपदा की कथित चोरी के आरोप में AI डेवलपर एंथ्रोपिक के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि एंथ्रोपिक ने गैर कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में कॉपीराइट वाले संगीत और गीतों का उपयोग अपने क्लॉड AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। वादी पक्ष, जिसमें वार्नर म्यूजिक ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखाएं भी शामिल है, उसने प्रत्येक कृति के लिए $1.5 लाख तक के मुआवजे की मांग की है। उसने दावा किया है कि एंथ्रोपिक की गतिविधियों से संगीत प्रकाशकों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गीतकारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। एंथ्रोपिक ने संगीत कंपनियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार, एक बार फिर, नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमों वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: तामसान नानी सुरु,
0: ताम क्या लोगी।
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है।
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो,
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
2: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो,
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
2: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा,
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास,
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
4: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
4: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
4: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
4: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
4: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
4: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
4: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
4: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
4: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
4: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
4: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
4: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
5: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
6: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
4: निंकी गा रिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
4: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
4: अरिमस
0: है क्रिया
4: अर
0: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
6: कोरे गा ओसुमे देस,
0: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
4: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
4: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: निंकी गा अरिमस, इचिबान निंकी गा अरिमस, どれが一番人気がありますか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
4: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे

0: सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
1: ओतोकुना, ओतोकुना,
0: जो एक ना विशेषण है।
2: याद रखिएगा, वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को दिस में बदलते हैं, तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: गोचुमोन वा?
1: गोचुमोन वा?
2: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
1: चुमोन
2: का अर्थ है ऑर्डर, और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
2: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: ご注文は？タムさん、何にする？
5: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
6: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों, रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
2: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
2: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। नेपाल और चीन की सीमा के पास आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास आपदा के एक सप्ताह बाद भी जारी हैं। नेपाल में आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर 16 लोगों की मौत हो गई है और 540 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित कई समुदायों में अब भी बिजली और संचार व्यवस्था नहीं है। उनका यह भी कहना है कि बाढ़ से सड़कें और पुल टूट जाने के कारण लोग फंसे हुए हैं। भारी मशीनों की कमी के कारण कीचड़ हटाने के काम में बाधा आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल सरकार तलाश और बचाव अभियान के लिए सेना और पुलिस सहित 20,000 कर्मियों को तैनात कर रही है। मध्यवर्ती नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में स्थित पन बिजली कर संयंत्रों में 630 से अधिक श्रमिक इमारतों या सुरंगों में फंसे हुए हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूरे सप्ताह बारिश जारी रहने का अनुमान है। बचाव कर्मी नदियों में बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं के खतरे का सामना कर रहे हैं। वर्षा अग्र के साथ आए निम्न दाब तंत्र के कारण उत्तरी जापान में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम अधिकारियों ने आओमोरी प्रिफेक्चर में भूस्खलन और बारिश की चेतावनी दी है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि आओमोरी में वर्षा के लगातार बनते घने बादलों से भूस्खलन या बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार तोहोकु क्षेत्र में बृहस्पतिवार तक गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तोहोकु में बृहस्पतिवार सुबह तक 24 घंटों में 100 मिलीमीटर तक और होक्काइडो में 80 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने का आग्रह किया है। एजेंसी का यह भी कहना है कि बृहस्पतिवार से पश्चिम से पूर्वी जापान तक के व्यापक क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक के 24 घंटों में शिकोकु में 200 मिलीमीटर, तोकाई, किंकी, दक्षिणी क्यूशू और अमामी में 150 मिलीमीटर तक, होकुरिकु में 120 मिलीमीटर और कांतो, कोशिनेत्सु तथा चुगोकु क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। अतिवृष्टि की संभावना है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिवसीय बैठक अमेरिका के एशविल शहर में समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जोखिमों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई संयुक्त बयान पारित नहीं किया। जापानी अधिकारियों ने बैठक से इतर अमरीकी समकक्षों के साथ येन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। G20 बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने कहा कि जापानी अधिकारी बंधपत्र बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब जापान के प्रमुख 10 वर्षीय बंधपत्र पर लाभ लगभग 30 वर्षों में पहली बार 3% से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने लाभ के विशिष्ट स्तरों के बारे में बात करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ ने भी कातायामा के साथ पत्रकारों से बात की। उन्होंने संकेत दिया कि जापानी बंधपत्र लाभ में वृद्धि वैश्विक रुझानों से जुड़ी है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष और वित्तीय नीति पर बाजार के दृष्टिकोण के कारण बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का हवाला दिया। उएदा ने कहा कि वित्तीय अधिकारी अर्थव्यवस्था पर बंधपत्र के बढ़ते लाभ के प्रभाव पर नजर रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाला एक घोषणा पत्र जारी किया। शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में मंगलवार को समाप्त हुआ। चीन और रूस के नेतृत्व वाले इस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में ईरान सहित 10 सदस्य हैं। बिश्केक घोषणा पत्र में नेताओं ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और राजनीतिक व राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सदस्य देश द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को बरकरार रखेंगे और इतिहास को बदलने के प्रयासों का विरोध करेंगे, जो संभवतः जापान के संदर्भ में कहा गया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहयोगी देशों के साथ एक विस्तारित बैठक में भाग लिया। कथित रूप से अमेरिका की आलोचना करते हुए शी ने कहा कि प्रमुख देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने और कानून के शासन का सम्मान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रूस ने घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि रूस इस कठिन समय में ईरान को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। पेजेश्कियान के हवाले से कहा गया कि उन्हें विश्वास है कि ईरान उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों और अमरीका का सामना कर सकता है। सोनी ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखा और 34 अन्य कंपनियों ने बौद्धिक संपदा की कथित चोरी के आरोप में AI डेवलपर एंथ्रोपिक के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनका दावा है कि एंथ्रोपिक ने गैर कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में कॉपीराइट वाले संगीत और गीतों का उपयोग अपने क्लॉड AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। वादी पक्ष, जिसमें वार्नर म्यूजिक ग्रुप की संगीत प्रकाशन शाखाएं भी शामिल है, उसने प्रत्येक कृति के लिए $1.5 लाख तक के मुआवजे की मांग की है। उसने दावा किया है

0: की एंथ्रोपिक की गतिविधियों से संगीत प्रकाशकों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गीतकारों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। एंथ्रोपिक ने संगीत कंपनियों के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, नेपाल में बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं और आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक 1,050 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3,900 से अधिक लोग लापता हैं। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी शामिल हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 27वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि कई विकल्पों में से सबसे अच्छा कौन सा है।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम आज टोक्यो में रामेन की एक प्रसिद्ध दुकान में आई है। हारूसान हाउस का निवासी काइतो भी उसके साथ है। रेस्तरां में ऑर्डर देते समय ताम को यूकी की बात याद आई। यूकी एक जापानी छात्र है जो संगीत का अध्ययन कर रहा है और ताम से उसकी मुलाकात वियतनाम में स्वयं सेवकों के रूप में काम करते हुए हुई थी।
0: तो आइए सुनते हैं 27वें पाठ की बातचीत।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले दुकानदार ने ताम और काइतो से कहा,
2: गोचुमोन वा,
0: ऑर्डर देना चाहेंगे।
1: फिर काइतो ने ताम से पूछा,
2: तामसान नानी सुरु,
0: ताम क्या लोगी।
1: ताम को समझ नहीं आया कि कौन सा व्यंजन चुने, इसलिए उसने काइतो से पूछा,
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: सबसे स्वादिष्ट कौन सा है।
0: काइतो ने जवाब दिया,
2: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो,
0: मिसो रामेन बढ़िया होता है।
1: ताम सोचने लगी,
3: मिसो रामेन,
1: मिसो रामेन।
0: तभी उसे वियतनाम में यूकी से हुई बातचीत याद आई।
4: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो,
0: जापानी रामेन स्वादिष्ट होता है।
4: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा,
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: तो ताम ने दुकानदार से कहा,
3: वताशी मिसो रामेन नी शिमास,
1: मैं मिसो रामेन लूंगी।
0: लगता है मिसो रामेन के साथ ताम की कुछ पुरानी यादें भी लौट आई हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का,
1: यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा है। ये वाक्य सीखकर आप पूछ सकेंगे कि तीन या अधिक चीजों में से सबसे बढ़िया कौन सी चीज है।
0: इस वाक्य में
5: दोरे
0: का अर्थ है कौन सा, उसके बाद आया है गा, जिससे पता चलता है कि
5: दोरे
0: इस वाक्य का विषय है।
5: इचिबान
1: का अर्थ है पहला नंबर या सबसे, और
5: ओइशी
1: का अर्थ है स्वादिष्ट, इसलिए
5: इचिबान ओइशी
1: का अर्थ है सबसे स्वादिष्ट।
0: अंत में लगा है
5: देसु का,
0: और अंतिम ध्वनि का सुर ऊंचा है, जिसका मतलब है कि ये प्रश्न है।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि तीन या अधिक चीजों में से किसी एक को किसी विशेषता के आधार पर दूसरी चीजों की तुलना में सबसे आगे बताते समय
5: इचिबान
1: का उपयोग होता है। जैसे अगर आप कहना चाहते हो सबसे स्वादिष्ट, तो
5: ओइशी
1: यानी स्वादिष्ट के पहले
5: इचिबान
1: लगाकर बनेगा
5: इचिबान ओइशी।
0: अगर आप कई चीजों में से किसी एक के बारे में पूछना चाहते हो तो वाक्य के शुरू में कहेंगे
5: दोरे गा इचिबान।
0: इसमें
5: दोरे
0: प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कौन सा।
1: अब अगर आपको पूछना है कि सबसे स्वादिष्ट कौन सा है, तो आप जापानी भाषा में कहेंगे दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओइशी देसु, इचिबान ओइशी देसु, दोरे गा इचिबान ओइशी देसु का।
1: अब एक बातचीत सुनते हैं जिसमें एक ग्राहक उपहारों की दुकान में मिठाई चुनने की कोशिश कर रही है।
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
7: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
6: दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमासु का?
1: सबसे लोकप्रिय कौन सा है?
0: इस वाक्य में
5: निंकी गा रिमस
0: का अर्थ है लोकप्रिय है, जिसमें से
5: निंकी
0: का मतलब है लोकप्रिय और
5: अरिमस
0: है क्रिया
5: अर
0: यानी होना का मास रूप।
1: इसके बाद पुरुष ने उत्तर दिया
7: कोरे गा ओसुमे देस,
0: ये वाला बढ़िया है।
1: यहाँ
5: कोरे
1: का मतलब है ये वाला और
5: ओसुसुमे
1: का भाव है बढ़िया। अपना सुझाव देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो दोस्तों आप भी ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: निंकी गा अरिमस, इचिबान निंकी गा अरिमस, दोरे गा इचिबान निंकी गा अरिमस का।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आप एक दुकान में सूटकेस खरीदने आए हैं। आप पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता के लिए जापानी शब्द है
5: यासुई, यासुई।
1: तो कोशिश कीजिए।
7: दोरे गा इचिबान यासुई देसु का? दोरे गा इचिबान यासुई देसु का?
0: अब मान लीजिए कि आप एक जापानी रेस्तरां में मेन्यू देख रहे हैं। उसमें बहुत सारे सेट हैं और आप जानना चाहते हैं कि सबसे किफायती कौन सा है। किफायती के लिए जापानी शब्द है
5: ओतोकुना, ओतोकुना,
0: जो एक ना विशेषण है।
1: याद रखिएगा वाक्य के अंत में ना विशेषण का इस्तेमाल करने के लिए अंत के ना को देस में बदलते हैं। तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो दुकानदार की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ご注文は？
5: ご注文は？
1: का अर्थ है ऑर्डर देना चाहेंगे। ग्राहकों से ऑर्डर लेते समय रेस्तरां के बैरे इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं।
5: चूमों
1: का अर्थ है ऑर्डर और ग्राहक को सम्मान देने के लिए इस शब्द से पहले गो लगाया गया है।
0: वाक्य के अंत में लगा वा विषय सूचक है। वाक्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया है, लेकिन ग्राहक संदर्भ से इसका भाव समझ सकते हैं, जो है ऑर्डर देना चाहेंगे या क्या लेंगे।
1: आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, काइतो के साथ खाना पीना। आज हम बता रहे हैं रामेन के बारे में।
0: दोस्तों रामेन मैदे से बने एक तरह के पतले नूडल्स हैं, जिन्हें उबालकर गर्म सूप में डालते हैं और ऊपर से उबला अंडा, मांस, सब्जियां और अन्य चीजें रखकर परोसते हैं।
1: मूल रूप से ये व्यंजन चीन से है, लेकिन जापान में इसके रूप में कई बदलाव आए हैं और अब ये जापान के प्रमुख व्यंजनों में गिना जाता है।
0: रामेन का सूप कई तरह का हो सकता है, जैसे चिकन या पोर्क की हड्डी या समुद्री खाद्यों से बना सूप। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मिसो यानी सोयाबीन के पेस्ट, नमक, सोया सॉस और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है।
1: वैसे रामेन के नए और अनूठे रूप विकसित होते जा रहे हैं, जैसे चीज या ढेर सारी क्रीम वाला रामेन, और अलग अलग क्षेत्रों में इस व्यंजन की अलग अलग विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं।
0: अगर जापान आने का मौका मिले तो ये नूडल्स भी जरूर चख कर देखिएगा।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में फोटोग्राफर मिया एक संगीत प्रस्तुति में जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।